राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे। ओ लॉर्ड इफ यू विल नॉट ब्रेक विद मी देन आई विल नॉट ब्रेक विद यू। जो तुम गिरवर तो हम मोरा। इफ यू आर द माउंटेन लॉर्ड देन आई एम द पीकॉक। जो तुम चंद तो हम पहे हैं चकोरा। इफ यू आर द मून देन आई एम द पार्ट्रिज इन लव विद इट। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे। तुम स्यों तोर कवन स्यों जोरे। ओ लॉर्ड इफ यू विल नॉट ब्रेक विद मी देन आई विल नॉट ब्रेक विद यू। फॉर इफ आई वर टू ब्रेक विद यू विद होम वुड आई देन जॉइन। जो तुम दीवरा तो हम बाती। जो तुम तीरथ तो हम जाती। इफ यू आर द लैम्प देन आई एम द विक। इफ यू आर द सेक्रेट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज देन आई एम द पिलग्रिम। साची प्रीत हम तुम से जोरी। तुम से अवर संग तोरी। आई एम जॉइंड इन ट्रू लव विद यू ओ लॉर्ड। आई एम जॉइंड विद यू and I have broken with all others. Jeh jeh jaun tahan teri seva. Tum so thakur aur na deva. Wherever I go, there I serve you. There is no other Lord Master than you, O Divine Lord. Tumre bhajan kate jam phansa. Bhagat het gaavai ravidasa. Meditating, vibrating upon you. The noose of death is cut away. To attain devotional worship, Ravidas sings to you, O Master. Madhure, tum na toro, to hum nahi tore. Tum syon tor, kavan syon jore. Raag sorat, taal, choti tin taal, 16 beats.

कर अपने ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे पत बिल्कुल लिए कर अपने सगल खत नमस्कारो

0: अभिप्राप्त मांग दे रिया गोविंद मिल की त्रिवरिया अवर काज तेरे कितने नकाम मिल सास संगत भज के वल नाम शरण राम लाभ भोजन करण के जन्म था जात्र माया के खरा हो
1: जब तब

0: हमरी करो हाथ देर अच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मरे हमारा अपना जान करो पित पारा हमरे दुसवे तुम काबो आप हाथ दे मोहे बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर इच्छा निज कर दे करिए सा पैरन को वास करिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रे प्यासा तुम्हें छाड़ को वर ना त्याऊ जो बरचाऊ सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिये आप हाथ दे मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निभरिए बुझो सदा हमारे पच्छा श्री स्तुजियो करियो रक्षा राख लियो मखन हारे सैब संसार प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चितर जिसकंता काल पाए ब्रह्मा भक्तरा काल पाए शिव जी अवतरा
1: काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जो सुखियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जवन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताय हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैन दक्षिण उपजायो आदंते के उतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार ते सिखो मारी सकल प्रजा दिना सवारी सिमरन को सिमरन सुख दियो सतरन को पल मोहब्बत कियो कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछान चीटी ते कुंचर स्थूला
0: सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जान जब युद्ध कर करा कर तारा प्रजा तर तब दे अवारा जब या कर हो कबू तुम्हें मृत दे तरसमू जेते बदन से साधारे आप अपनी बुद्ध

कौ सिमट प्यो शंकरे खेटा सगली शिष्ट काय चंबो आ जुगा सरु संयंब और अच्छा मेरी तुम करो सिख बार असिख संगरो दुश्चिंत उठो थुन पाता सकल कलेश करुणन खाता जे अस्तुता सरणी परे तिनके दुष्ट दुख थे मरे पुरख जम पग परे त्यारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए ताके काल निकलनी आया रक्षा हो ताय सब काला दुष्ट रिष्ट रे तत्काला कृपा दृष्टा जान हरो ताके ताक तरक मो हर हो सब होई दुष्ट है अच्छा सके न कोई।

0: भैया पाएंगे जब ते तुम्हारे तब ते गुमाम तेरे नियाने राम नीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने
1: सिमर शास्त्र भी सबे वो पेट के आम एक न जाने कृपा तुम्हारी कर मैं न क्यों सब तो बखाने सगल द्वार को छाड़ के ਵਾਹਿਗੇ ਕੀ ਲਾਜਵਾਸ ਗੋਬਿੰਦਾ ਅਸਤਵਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਛੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋ ਤੋ ਗਾਓ ਅਰੀ ਕੇਰਾ ਮੰਜਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गला सुमरा स्वामी सो क्यों मन विसारे कहे नानक मन मेरे सदरो नाले साचे साहबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरे सब कुछ जिस सो पाए सिर्फ सलाह तेरी नाम मन वसाए नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहब क्या नहीं कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर शांत सुख मनाए वस्या जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किया गुरु बिटो जिस वडियाईया कहे नानक सुनो संतो सवतरो पे यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंशो तित कर सवागे शब्द वाजे कला चितकर तारिया पाइन दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुरकरम पाया तुझ जिन को सिना मेर के लागे कहे

0: बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहल तुरे।
1: थाल विच त्रिवस्तु पयो सत संतों के चारो अमृत नाम ठाकर का पान जिसका सब सरदार जिको खावे जिको पुंछे इसका होए अधारो ये बस तजी ना जाए नित्र खोरदार हो।

0: तिस गुर को सद करी नमस्कार, तिस गुर को सद जाओ बलहार, सतगुर के चरण धोए धोए पीवा, गुरु नानक जप जप सद जीवा।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

0: ज्ञान सदम में सदम ब्राह्मण खत्री सदम सुन सदम सुंदर सदम प्राकृत सर सदम एक सदम एक जाने भयो नानक तक अदास है संग निन्न देव महला दूजा
1: एक सदम देवा देव देवा दे आत्मा आत्मा वास विजय को जाने भयो नानक।

0: तो बैठे घर आया ब्रह्मे कथु कदू अंत न पाया। राम भगत बैठे घर आया, राम भगत बैठे घर आया।
1: भजन आउंदा है एक संत वैष्णव कबीर जी दे घर आ गया। कबीर नूं चाह चढ़ गया, मत्था टेकिया, परिक्रमा कीतियां। ये पुरानी सभ्यता सी, सिख नूं सिख मिल पवे परिक्रमा करके ते मत्था टेकदा सी, मैनूं गुरु मिल पिया। नमस्कार कीती, लोई नूं आवाज मारी, लोईए आ साडे भाग जाग पै घर संत आ गया। उठिए किते रहिंदे सी, ते आ गया प्रभु दा प्यारा। बैठ गया, इधर वेख इधर वेख, उन्हें कुछ वेख्या, ताणी वेखी, जुलाया वाला सारा समान वेख्या। ये वैष्णव सी, ये छूत छात नूं मन्नदा सी, विष्णु दा उपाशक सी। ऐं वेख के ऐं वेख के कह लगा, वे तू जुलाहा कबीरा, तू जुलाहा। कबीर कहिंदा, हां जी, होछी मत मेरी, मैं जात जुलाहा, हर का नाम लियो मैं लाहा। मत मेरी होछी है, अकल मैनू है नहीं, जात भी मेरी जुलाहा दे कर मेरा जन्म होया। पर मेरे ते परमेश्वर ने कृपा की थी, मैं नाम दा लहा खटदा सब आखो सतना। कबीर जी कहन लगे, की शकोगे? वो कहिंदा, ओ कबीरा, मैं तो तेरे घर आण के पछताउना कि मैं आ क्यों गया। अठाठ तीर्थां दी यात्रा कीती सी, सारा भजन सारी यात्रा एवें ही गई तेरे घर आण के। तू मैनूं खाण नूं पुछदा, मैं ते पछताउना, रात पै गई आ, जा किते सकदा नहीं, मुड़ के फिर मैनूं यात्रा करनी पऊगी। कबीर जी कहण लगे, संत जी, हुण तुसीं आत गए ही हो, पिटे ते गए ही हो, तुहाडा सारा कर्म धर्म सारा नष्ट हो ही गया, मुड़ के यात्रा कर लियो, होर टुबा ला लियो। पर जे तुसी ना कुछ खादा, असी भी तुहाडे सिर चढ़ के कुछ नहीं खाना, ये संताप भी तुहानू लगेगा। शास्त्र पढ़ लो, हुण जां कोई शर्त रख दियो, असी पूरी ना कर सकिए। ओह कहण लगा, भी कबीरा, मैं हैगा विष्णु दा उपाशक, जे तेरे घर विष्णु नूं मैं रोटी खांदियां वेख लवां ना, ते मैं भी रोटी खा लूंगा। कबीर जी कहण लगे, संत जी, इन्नी देर ला दित्ती, तुसी आउंदे ही कह दिंदे, अद्धा कम मुक्या होना सी। इन्नी देर ला दित्ती, हुण इह है नाम जपण वाला, उधर है दिखावा सब आखो सतनाम। कबीर जी कहण लगे, लोईए खिचड़ी तैयार कर। कबीर दा जिहड़ा खाणा सी ना मन पसंद, वो खिचड़ी सी, ते गुरु अमरदास महाराज दा जिहड़ा मन पसंद खाणा सी ओगरा सी, ओगरा लूण तो बिना, मिठे तो बिना, जिवें दलिया हुंदा इस तरह। लोईए इन्हां महापुरखां दी कृपा दा सदका, अज साडे घर विष्णु भगवान आउणगे, खिचड़ी तैयार करो। खिचड़ी तैयार हो गई, इन अरदास कीती, हे निरंकार, हे परमेश्वर, हे सर्व शक्तिमान, मैं तेनू खिचड़ नहीं सी देना चाहुंदा, तू ते जर्रे जर्रे जी, कोई ऐसी जगह नहीं जिथे तू नहीं, तू वसदा है, पूरी शक्ति च वसदा है। पर साध खड़े पै गए, मैं तेनू खेचड़ नहीं सी देनी चाहुंदा, ये कहिंदा रोटी तां खानी, तू आवें ते तू कृपा कर, तू जर्रे जर्रे च, सारे रूप तेरे ने। अज तू ये साध की खातर, संत की खातर, ये वैष्णव संत है, तू विष्णु भगवान हो के आ। अजें नमस्कार की सिर चक्या तो विष्णु बैठे, ये गल गलत नहीं। बाणी का वचन है, अनक रूप खिन माहे कुदरत धार दा, ये बाणी का वचन है। वो बेअंत है, अपने भगत की रक्षा वास्ते नरसिंह बन गया, बाणी च वचन है ना, भगत हेत नरसिंह भेव। अज नाम जपने वाले ने अरदास की, नाम जपने वाले ने अरदास की, हे श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज मैनू तू गुरु नानक दसें। मैं जदों तेरे दर्शन करा तो मैं गुरु नानक के रूप च करा। सब आखो सतना, गुरु दूर नहीं जे, ये भावना की लोड़ है। इन्हां दी भावना जे असीं इन्हां अखां नाल वेखांगे तो पत्रे दिसणगे, स्याही दिसूगी, आ मंजी साहब दिसूगी। तो जदों अंदरले नैणा ना वेखांगे ना तो सानू शब्द दे विच गुरु नानक दिसूगा। अनक रूप खिन माहे कुदरत धार दा, जिसनों लाए सच तिसे उधार दा, जिस दे होवे वल कदे ना हार दा। हुण अरदास कीती, विष्णु प्रकट हो गया। विष्णु कहण लगे, कबीरा आ जा, बह जा इत्थे, लोइए तू ही आ जा। कबीर संत नूं कहण लगा, महापुरखो तुसीं आ जाओ इत्थे बैठो हुण पंगत च। ते विष्णु भगवान कहण लगे, ए इस पंगत दे विच बैठण दे लायक नहीं, ए नहीं बैठ सकदा। कमालिया तू बह जा, कमालिए तू बह जा, लोइए तू बह जा, ए संत ये इत्थे बैठण दे लायक नहीं। हैरान हो गया, मैं इहदा पुजारी, इहदा उपाशक, जुलाए दे घर ते आ गया, मैनू कहिंदा है इत्थे बैठण दे लायक नहीं। वो कबीर दे चरणा च टह पिया, कहन लगा, कबीरा मैनू तो इउं जापदा जिउं तूं मोर लिया होया। सब आखो सतना। कबीर कहन लगा, हां इहदा मुल है, ये सोने चांदी नाल नहीं मिलदा, खर्च कीतिया नहीं।

बहुत प्राचीन मधुर अते प्रमुख रागों विचों एक है। इस विच ऋषभ अते धैवत अति कोमल अते होर सुर शुद्ध लगते हैं। वाद्य स्वर धैवत अते संवादी ऋषभ है। इसके आरोह अवरोह विच सत सुर लगते हैं। अमृत वेले तो पौ पटाले दे समय दौरान यह राग गाया जाता है। इस राग की मधुरता ऋषभ अते धैवत दे उचित प्रयोग ते निर्भर है। पैरों का वातावरण अति सुहावना हुंदा है। प्यार उपजाऊ है। इस राग विच भगत प्रहलाद जी की कथा का जिक्र गुरु साहब ने विस्थार नाल कीता है, जिसने हरनाक्ष का हंकार भन्निया। गुरु की करणी बारे फरमान है, मृग पकड़े बिन घोर हथियार। इत्थे ही नामदेव जी की सूरमताई का भी जिक्र है, जिन्ना मां नूं कह दिता सी ना हो तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए। बीबी जसविंदर कौर जी पासों शब्द सरवण करो, गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। अते दूजे शब्द आ गायन कर रहे हैं भाई रविंदर सिंह जी। शब्द है माथे तिलक हथ माला बाना। पहला शब्द गुर जैसा नाही को देव।

श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने खालसा पंथ की सिरजना की। गरीब नवाज साहब सच्चे पातशाह महाराज के प्यारे सिख भाई नंद लाल, भाई देसा, भाई प्रहलाद आदिक सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी अंदर अज श्री अबचल नगर विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगी धर दशमेश पिता के चरणा च बेनती करके नंद लाल जी कह रहे हैं, हे सतगुरु, सिख पंथ की सिरजना करने वाले खालसा पंथ नू रचनहार साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरसिख की रहत नू आप दर्शाउणा करो। गुरसिख का कर्म की है? सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने भाई नंद लाल दे

सत संगत अंदर पहुंचना अमृत वेले इशनान करके ते जेड़ा सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज अंदर शरण आउन वाला गुरसिख नहीं जेड़ा अमृत वेले उठ के इशनान नहीं करदा प्रात काल सत संग तो बगैर व्यर्थ कर दिंदा है। गरीब नवाज कहंदे हन ओ गुरसिख तनखाइया है ओ गुरसिख गुरसिख नहीं गरीब नवाज।

गुरु का दिता होया निशान केसां दे अंदर कंघा रखना ते दोनों वक्त केसां दी सफाई करनी कंघा फेरना दस्तारा जड़ा है इसनूं उतार के बड़े आदर सत्कार दे नाल दस्तार नूं फिर सजाउणा टोपी जी सिर दे उपर धर लैणी यह गुरसिख दा कर्म नहीं। कंघा दोनों वक्त कर पाग चुने कर बंद आई दातन नीत करे ते मुख दी सफाई करे क्योंकि जिस मुख विचों जिस रसना नाल परमात्मा दा नाम जपना वो रसना पवित्र होनी चाहिदी वो मुख पवित्र होना चाहिदा। भाई नंद लाल जी गुरसिख दोनों वक्त कंघा करे गुरसिख दस्तारा सजावे झाड़ के छंड के दस्तारा सजावे अते मुख नूं पवित्र रखे।

अगला कर्म है भी दसवंध, जड़ी किरत कमाई करनी उस विचों दसवां हिस्सा गुरु के अर्पित करना ते गरीबां गुरबियां दी सेवा करनी। दसवंध गुरु

चोरी ठगी यारी दा पैसा कतर कर देन। साहब सचे पातशाह महाराज कहंदे ऐसे गुरसिख दा कदे वसा ना करना, क्योंकि हक पराया नानका ओ सूअर उस गाए, गुर पीर हामा ता भरे जा मुरदार ना खाए। मैं भी ऐसे सिख दी हामी नहीं भरांगा जेड़ा छल फरेब दा धन इकट्ठा करदा, ते जेड़ा गुरु नूं दसवंध नहीं देंदा, किरत दस ना हुंदी नहीं करदा। ऐसे गुरसिख दी गवाही सची।

गुरु की संगत विच आउन वाली मां भैण उसनू मां भैण दा रूप जाने, धी नू धी दा रूप जाने, बुरी निगाह नाल ना वेखे। साहब गरीब नू आज सचे पातशाह महाराज फरमान करदे ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई नंद लाल जी, माए भैण जो आवै संगत, दृष्ट बुरी देखे तिस पंगत, सिख होए जो करै क्रोध, कन्या मूल ना देवै सोध। जेड़ा गुरसिख सत संगत अंदर बैठी हुई मां भैण नू मां भैण ना जाने, धी नू धी दा रूप ना जाने, गरीब नू आज सचे पातशाह कहंदे हन ऐसे गुरसिख, ऐसे गुरसिख दा मैं दर्शन करके राजी नहीं, वसा लैके राजी नहीं। ते जेड़े कुड़ी मार हुंदे ने ना, जन्म तो ही बच्ची दा गला घुट देना, गरीब नू आज सचे पातशाह कहंदे गुरसिख दा सुभाव निम्रता सहित होवे, क्रोध ना करे। बच्ची ने घर अंदर जन्म लिया, उस नू बच्चे दा ही रूप समझ के पाले, क्योंकि सिंह मेरा जेड़ा है वह सपुत्र है, बच्ची जेड़ी कौर है ते छोटा सपुत्र है राजे दा बादशाह दा, इस करके बच्ची ते बच्चे नू इको जिहा प्यार।

सात जन्म कुश्ती होए मरे सिख होके सिर ते टोपी धर लेनी टोप ले लेना भाव के पग बन के रख देनी माया वाली पग ला बन के रख देनी काफी दिन तक बनी रहनी रोजाना उस नु चुक के सिर ते धर देना। गरीब नु आज कहंदे हाथ किस वास्ते दिते ने जे अपना दस्तारा नहीं सजा सकते। जे अपना दस्तारा अपने हाथी रोजाना सजाओ खूबसूरत लगो गुरु के सिखो। इस करके गरीब नु आज कहंदे ओ मेरा सिख ने जेड़ा टोपी सिर ते रखदा ओ सत जन्म कोड़ियां दे जन्म दे विच बतीत करदा। गरीब नु आज कहंदे तैनू हाथ क्यों दिते सी कोड़ा हो जांदा। होए सिख सिर टोपी तरै सात जन्म कुश्ती।

एक वाहिगुरु अकाल पुरख महाराज दे दिते हुए मंत्र तो बगैर दूजा मंत्र जपन वाला गरीब नवाज कहंदे मेरा सिख नहीं। भाई नंद लाल ए मर्यादा लिखी जाओ नाल नाल जिहड़े मैं वचन कह रहा ते इन्हां दे अंदर कोई तब्दीली ना आवे। जो मेरे मुंह चो निकल रहे ने हूब हू उसे तरह लिखे जान, बल्कि प्रोड़ता करके लिखे जान ते वाधू चंगी गल है। क्योंकि सिख ए ना कहे भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे निकले हुए मुंह चो वाग शायद समय दे गुरसिखा ने फर्क पा दे।

जी साहब ते जाप साहब तो बगैर जेड़ा गुरसिख खाना खांदा ना खुराक खांदा जेड़ा गुरसिख भोजन छकदा जल पान छकदा गरीब नवाज कहंदे ओ भोजन नहीं ओ खुराक नहीं ओ विष्टा दा किरम होके ते ओ विष्टा दे अंदर मुंह मार रहा है बिना जपजी साहब ते जप साहब तो बगैर बिन जप जाप जपे बिना जो जेवै प्रसाद सो विष्टा का किरम होए जन्म गवायो वाद व्यर्थ जन्म गवा दिता है। इथों सिद्ध है गुरु के सिखो अमृत वेले हो उठ के जपजी

रोजाना दा उचारण वाहिगुरु होवे, अठे पैर कम ते भी वाहिगुरु वाहिगुरु करदा रवे, दुकान ते बैठा वाहिगुरु करे, घर विच बैठा वाहिगुरु करे, रसना दे उपर वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु दा टिका होवे, ते वाहिगुरु नू हिरदे अंदर वसा लवे, ऐसा वाहिगुरु हिरदे च वसे भई वाहिगुरु का खालसा अगो आउंदा होया दीदार दे देवे, भई गुरु का सिख आ रहा है ओनू मिलन वास्ते अगा फतेह बुलाउन वास्ते जावे, जाके सामने गुरसिख दे दर्शन करके वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुला के गुरसिख दा हाल पुछे। ए ना होवे भई गुरसिख नू वेख के राह ही छड जावे ते फतेह ते अलग रह गई। अज दे समय दे अंदर गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत करदा है, गरीब नवाज सचे पातशाह ने आउन वाले समय नू वेख्या, इस करके ए पूर ने पा दिते गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत नहीं करेगा।

खालसे नूं पहनाए ने। पूरी यूनिफॉर्म तो बगैर, पूरी ड्रेस तो बगैर गुरु का सिख सिंह नहीं रह जांदा, खालसा नहीं रह जांदा। जिवें किसे ऑफिसर दी यूनिफॉर्म होवे, वर्दी होवे, उन्हूं लाजमी है वी जदों ऑफिस विच जावे, जदों काम ते जावे, जदों मालक दी हजूरी अंदर हाजरी होवे, उदों ओ जित्ती हुई ड्रेस नूं पहने। गरीब नूं अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसे नूं पंज ककार बख्शे ने, ते गरीब नूं अज कहिंदे मैं ये बर्दाश्त नहीं करांगा वी मेरा गुरसिख पंजां ककारां दा धारनी ना होवे, ला के फिरदा रवे, ऐसी गल ना होवे। शस्त्रहीन ए कबू ना होई, कदे भी शस्त्रहीन ना हो। शस्त्र हमेशा पास रखे, शस्त्र ते शास्त्र। शास्त्र है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, ते शस्त्र है ए जेड़े पीर हन महाराज ने दिते ने रखिया वास्ते। ए हामी भरनगे सच्ची दरगाह दे अंदर के गुरु का सिख शस्त्रां दे नाल शास्त्र दी पूजा करदा सी।

जुआ असत झूठ बोलना, चोरी करनी, मदरा शराब पीनी, नशियां दा सेवन करना। गुरु का सिख निज नारी के संग अपना जीवन बतीत करेगा, पर नारी दा सुपना भी इस दी जिंदगी अंदर नहीं आएगा। जुआ कदे नहीं खेडेगा, क्लबां दे अंदर जाके जुए खेलने, घरां दे अंदर बह के ताशां खेडनियां, कार्ड खेडने, गुरु के सिख नूं मनाही है। पर नारी इहदा सेवन ना करना, जुआ ना खेडना, असत झूठ ना बोलना, चोरी ना करनी, मदरा शराब नशे आदिक दी वरतों ना करनी। गरीब नवाज कहंदे ए पंज ऐब ने जगत दे, ए सिंह तज जावे, ओ जवान गिनिया जाएगा, ओही असली मेरा जवान।

मेरो दर्शन नहे ते पापी त्यागे देख। वो ते अपने आप नु सिख ना मनन जिन्होंने केस मनाए हुए ने, मेरे तो सिख वह भी नहीं जिन्होंने अमृत नहीं छकिया, जिन्होंने पाहुल नहीं लई ते केवल केस धारण किए हुए ने, ते सबना मोहरे आके बहन का दावा करते ने। उची उची आवाज गुरु महाराज की दिती हुई बाणी का याप जाप करते ने, पर आप पगाते नहीं। केस रखे हुए ने, पाहुल नहीं छकी हुई, खंडे बाटे का अमृत नहीं छकिया होया, वह भी मेरे सिख नहीं। ते जेड़े सहजधारी ने, जेड़े अपने आप नूं कहाउंदे ने वी केस मना के वी गुरु के सिखां सिखी अंदर है, वह मेरे सिख किवें हो सकते ने। साहिब गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने पवित्र वाक भाई नंद लाल नूं सारे दे सारे दिते। भाई नंद लाल ने यह वाक गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज दे लिख ले। संकल्प कीता गरीब नवाज, समयां दा समां बतीत हो जाएगा कि यह रहत मर्यादा सिखां दे अंदर ज्यों दी त्यों चलेगी। ते गरीब नवाज कहण लगे, नहीं, मेरे सिख मेरा खालसा राज दे अंदर आके भटक जाएगा, ते जदों ए भटकेगा खुआर हो जाएगा, दिन ब दिन खुआर हुंदा चला जाएगा, दिन ब दिन खुआर हुंदा चला जाएगा, क्योंकि इसनू राज पाउंदा नहीं। ते जदों इसने राज नाल प्यार

गुरसिख दे जीवन दा नक्शा, गुरु के सिख दा जीवन ऐसा होवे, पवित्र होवे, ते फिर ओ गुरु दियां खुशियां प्राप्त हासिल कर जाएगा। नहीं ते गरीब नवाज कहंदे हन, रहत बिना ना सिख कहावै, रहत बिना दर चोटां खावै, रहत बिना सुख कबू ना लह। कदे भी सुख उसनू नहीं मिलेगा जिसने रहत त्याग दिती है ना। पाहल पी कुकर्म कमावत, पाहल पी के कुकर्म कमाउंदे ने उन्हां नूं तनखाइया दंड दिता जांदा। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज उन्हूं कहंदे भी खालसा पंथ की बरादरी चो उन्हूं छेक दिता जावे जिहड़ा अमृत छक के ते कुकर्म कमाउंदा। भाई नंद लाल गरीब नवाज सचे पातशाह का प्यारा सिख, इसने ये रहतनामा गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज कोलों लिखिया। भाई प्रहलाद साहब जी ने लिखिया, भाई देसा जी ने लिखिया, बड़े बड़े हवाले हैं साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के दिते हुए इस रहतनामे दे। गुरु के सिखो साहब सचे पातशाह जी महाराज जी के वतना मुताबक अपने जीवन नूं बतीत करिए। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज।

0: ना के किसी व्यक्ति दे ना किसी सिख दे, यह गुरु के वचन जान के मनना ते अपना भला हो जाएगा। जीवन अंदर खुशियां बहारा नौ निदा 18 सिदा आ जाएंगियां। तो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day.

हाथ जोर जोर कहूं आपके बचन की प्रतीत कौन माने गो राज करे खालसा आकी को न रह को खार होए मिले।

महाराज कलगीधर पिता ने भाई नंद लाल नूं कहा भाई आ तैनू दसीए भी साडे रूप केड़े केड़े ने केड़े रूप दे तुसीं अज तक दर्शन कीते ने ते केड़े दे दर्शन नहीं कीते ते केड़े दे आद जगाद तुसीं दर्शन करने ने।

पहला रूप साडा ए है जिहड़ा तिना गुणा तो परे है, रजो तमो सतो इन्हां तिना गुणों तो परे है। ये जिवें सारी बनस्पति दे अंदर अग है ना, किसे भी दरख्त नूं छांग के वेख लो, भावें ओ अंब दा होवे, भावें किक्कर दा होवे, भावें दरख्त निम दा है, भावें टाली दा है, अग सारिआं दे अंदर है। झट ही सारिआं नूं अग फड़ लैगी क्योंकि बनस्पति दे अंदर अग है। ते सारे दुद्धां नूं इकट्ठियां कर लो, भावें ओ घा दा दुद्ध होवे ते भावें मझ दा होवे, गां दा होवे, बकरी दा होवे, किसे दा भी दुद्ध होवे, उस दे अंदर घिओ है। जिवें दुद्ध अंदर घिओ ते बनस्पति दे अंदर अग है। घट घट व्यापरिया परमात्मा वाहिगुरु सच्चे पातशाह जर्रे जर्रे अंदर जिहड़ा वसदा पिया, एक रूप साडा ओ है जिवें जल किसे घड़े दे अंदर पाया होवे। ते जल जल दा रूप है, जल दे अंदर भी परमात्मा वस रिहा है। पहला रूप साडा तिना गुणा तो परे है, कोई उस गुण नूं जान नहीं सकदा, कोई उस नूं वेख नहीं सकदा। वेखण अंदर ते बड़ा कुछ नजर आ रहा है पर अनुभव दी अख नाल कोई नहीं वेख सकदा, इस करके इस गुण दी पहचान होनी मुश्किल है क्योंकि इस दे विच कोई रूप नहीं। ए चक्कर चिहन अर वर्ण जात अर पात नहन, जे रूप रंग अर रेख देख को कह ना सकत के। ए लंबा चल, इस रूप नूं अखां नाल वेख सकदे हो, अनुभव नहीं कर सकते।

गुण आप जी ने कथन कीता, दूजा रूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज है। ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंदर जितने अखर आए ने ना, जिन्हिया लगा मात्रा लिखिया गई ने, ए मेरे अंग ने। भाई नंद लाल जी, दूजा रूप साडा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज है, जेड़ा पहली पातशाही तो लैके दस पातशाहियां तक समाया है, लबा लब भरिया होया, हरेक खजाना इस दे अंदर है। इस नूं बड़े अदब सत्कार दे नाल गुरु मनना, बड़े अदब दे नाल इस नूं पढ़ना, बड़ी सुचमता ते पवित्रता रख के हाजरा हजूर जहरा जहूर जानना, जिवें साडे तो तुसी भै खांदे हो ना, इसे तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तो भै खाना सिखो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जाहर गुरु, जिन्हें इस दे अंग ने ना श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे, वो साडे अंग समझो।

मैं तेनू एक होर बात कहना, जिन्ने अखर ने ए मेरे रोम हन, शरीर दे जितने रोम ने ना, साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह ने कहा गुरु ग्रंथ साहब विच आए हुए अखर ए मेरे रोम ने, ते जे एक भी अखर उरा परां हो जाए समझो मेरा रोम टुट जाएगा, समझो रोमां दी बेदबी हो जाएगी। ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी पढ़न लगे, असी विचार नहीं करते कितनियां लगां मात्रा अगे पिछे हो जांदियां ने, किन्नी नरादरी होंदी, कोई पवित्रता नहीं। मैले हथ जड़े हन गुरु ग्रंथ साहब के अंगा नू ला देने आ, समझो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह जी के पवित्र चेहरे नू साडा मैला हथ लग गया। इस करके बड़ी पवित्रता दे नाल गुरु के सिखो, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नू गुरु मानो। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नू हाजिर गुरु मनोगे ते साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे दर्शन इसे विचों होणगे, दस पातशाहियां दे दर्शन होणगे। भाई नंद लाल जिन्हां लगा मात्रा ते अखर ने ए मेरे रोम ने बड़े पवित्र हिरदे नाल पढ़ने, बड़ी सोच विचार करके पढ़ने, किते अंगां दी बेदबी ना हो जाए, किते रोम जड़े हन टुट ना जान साहब सचे पातशाह महाराज दे। इस करके बड़े अदब नाल गुरु का सिख गुरु की बाणी पढ़े, गुरु ग्रंथ साहब नू मत्था टेके हाजरा गुरु मने। अगले वचन साहब सचे पातशाह जी ने

मथा टेकिया, पांच पैसे श्री फल, गरीब नवाज ने परिक्रमा कीतियां ते साहब सचे पातशाह महाराज आसन ते विराजमान हो गए। वेखद्या वेखद्या सिख बैराग अंदर ने बैराग दा समा बनिया होया, ए विछोड़ा सहया ना जाए। भाई दया सिंह आए, चरण पकड़े साहब जी दे, ते चरण हाथ विच ना आए, ते वैराग दे अंदर आंसू गिर पए। महाराज ए कड़ा रूप है, भाई दया सिंह ए जड़ा तू वेखना ए साडा वास्तव स्वरूप नहीं, वास्तव स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंदर समा गया। इस करके साडे तैनू चरण नजर आ रहे ने, हाथ ते नहीं आए तेरे च, गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणी लग। उस तों बाद भाई दया सिंह जी ने उठ के मथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं टेकिया, सारी सिख संगत ने गुरु ग्रंथ साहिब नूं मथा टेकिया। वेखद्या वेखद्या साहिब जी ज्योति ज्योत समा गए। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने ए वाक कहे सन सर्व सिखां दे अंदर, भई सब सिखण को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, जो प्रभ को मिल बोच है, खोज शब्द मैं ले, शब्द गुरु मन दिया। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने गुरियाई अपने हथी दिती ते नमस्कार करके ज्योति ज्योत समा गए। उस समय दा वातावरण एहो जिहा सी, सारी सिख संगत दे अंदर वैराग दा शब्द पढ़िया गया।

स्रोतम पानी पिता माता धरत महत जिव सरा द्वैदाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदू।

राग गौड़ी पूर्वी विच ऋषभ धैवत कोमल दोवे मध्यम ते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस राग की जाति संपूर्ण वादी ऋषभ संवादी पंचम अते समा शाम दा पहला पैर है। इस राग विच कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रिंसिपल शमशेर सिंह क्रीर।

कर कर पाप दर्ब किया, वर्तन कहताई कर कर पाप। पाप बुरा पापी को प्यारा, कर कर पाप दर्ब किया। तीन पवन की लक्ष्मी जोरी, तीन पवन की लक्ष्मी जोरी, कर कर पाप दर्ब किया, वर्तन